चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

अरे गुटों में स्वैग है, अरे गुटों में स्वैग है, अरे गुटों में स्वैग है, अरे गुटों में स्वैग है। Been trying to hit fly boy, yeah, I'm a life up in high boy, yeah, तू रख

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 11 मई 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही समय हो चला है खबरों की ओर रुख करने का. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे. आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर के भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. नमस्कार ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के हमें सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है. अगले एक घंटे तक कहीं मत जाइए क्योंकि आपका पसंदीदा शो लेकर आया है खबरों का दम, बातचीत का रंग और संगीत का शानदार तड़का. मैं हूं भव्या पांडे और आज का शो होने वाला है बेहद खास. तो चाय कॉफी तैयार रखिए, कार की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना रेडियो सफर. सबसे पहले हम बात करेंगे आज की खबरों की और साथ ही सुनेंगे भारत से खबरें. ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने भारतीय मूल के 33 वर्षीय व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसने कथित तौर पर अवैध तंबाकू कारोबार से मुनाफा कमाया और सरकारी अधिकारियों को फर्जी इमिग्रेशन दस्तावेज उपलब्ध कराए. अब ये जो मामला है ये कोर्ट पहुंच चुका है जहां 26 जून को पेशी होगी. तो पूरी जानकारी हम आपको आज के कार्यक्रम में देंगे और बताएंगे कि ये जो मामला है ये कहां तक पहुंचा है. समाज अक्सर कहता है जल्दी से पहले जैसा बन जाओ, लेकिन सच ये है कि डिलीवरी के बाद शरीर की जो रिकवरी होती है वो एक बहुत ही धीमी और लंबी जर्नी यानी सफ़र होता है. हार्मोनल चेंजेस, लगातार थकान होना, पेल्विक फ्लोर रिकवरी, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, ये सब बिल्कुल आम बात है. तो आखिर बाउंस बैक का जो तनाव यानी प्रेशर है महिलाओं पर कितना असर डालता है? क्या सच में हर माँ को तुरंत फिट और एनर्जेटिक दिखना चाहिए और अपने शरीर को गिल्ट और कंपैरिजन यानी कि दूसरी महिलाओं के साथ तुलना करने से हम कैसे रोक सकते हैं? इन्हीं सवालों पर खुलकर हम बातचीत करेंगे विमेंस हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निशा कालिया के साथ. और आपको बता दूं कि हाल ही में मदर्स डे भी गया है तो उसी के उपलक्ष्य में ये खास अंश मैं आज आप तक लेकर आऊंगी. अब जरा मेलबर्न की सड़कों पर नजर डाल लेते हैं. अगर आपने यहाँ ड्राइव किया है तो हुक टर्न नाम तो सुना ही होगा. आखिर ये हुक टर्न होता क्या है, इसे सही तरीके से कैसे करें और लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम एक खास अंश में आप तक लेकर आएंगे. अब आज का सवाल भी आपको बता देती हूँ. आज मैं आपको एक गाने की धुन सुनाने वाली हूँ और आपको पहचानना है कि ये गाना कौन सा है. तैयार रहिए. तो यदि आपने ये गाना पहचान लिया है तो जल्दी से 04397997667 पर अपने जो जवाब हैं मुझे भेज दें. इसके अलावा पूरे शो में होंगे आपके मैसेजेस, आपकी राय, आपकी बातें. तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सुनते हैं सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है. प्रस्तुत है 11 मई 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ. फेडरल हाउसिंग मंत्री क्लेयर ओनील का कहना है कि आने वाला फेडरल बजट देश में हाउसिंग सप्लाई की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा. बजट से ठीक पहले सरकार ने अगले 4 सालों में हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अतिरिक्त $2 बिलियन का ऐलान किया है. इसमें नई हाउसिंग डेवलपमेंट्स के लिए सड़कें, पानी, बिजली और सीवरेज जैसी सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा. वहीं सरकार नेगेटिव गियरिंग, कैपिटल गेन्स टैक्स और फैमिली ट्रस्ट से जुड़े नियमों में बदलाव पर भी विचार कर रही है. एक नई रिपोर्ट हाउसिंग कोड रेड के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स में प्रायोरिटी सोशल हाउसिंग वेटलिस्ट पिछले 4 सालों में 115% बढ़ गई है. रिपोर्ट के अनुसार अब करीब 12,500 परिवार इस सूची में हैं. इनमें बेघर लोग, घरेलू हिंसा से बचकर निकले लोग और अनसेफ हाउसिंग में रहने वाले परिवार भी शामिल हैं. वागा वागा जैसे रीजनल इलाकों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां वेट लिस्ट में 500% का उछाल देखा गया है। वहीं सिडनी के कैमडन, बैंक्सटाउन और फेयरफील्ड इलाके में भी इंतजार करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती नजर आई है। वहीं लेबर मंत्री मरे वॉट ने वन नेशन पार्टी पर डिविसिव रिटोरिक यानी समाज को बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये बयान उस समय आया है जब न्यू साउथ वेल्स की फेरर सीट पर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वन नेशन के उम्मीदवार डेविड फार्ले पार्टी के पहले इलेक्टेड फेडरल लोअर हाउस एमपी बन गए हैं, जिससे कि कोएलिशन का दशकों पुराना कब्जा खत्म होता है। इस नतीजे के बाद ऑपोजिशन लीडर एंगस टेलर पर दबाव बढ़ गया है, जबकि वन नेशन अब वेस्टर्न सिडनी में भी अपना प्रभाव बढ़ाने की तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया में फूड डिलीवरी वर्कर्स की तनख्वाह और कामकाजी परिस्थितियों को लेकर फेयर वर्क कमीशन में अहम सुनवाई चल रही है। 2024 में कानून में हुए बदलावों के बाद अब कमीशन को गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए लीगली एनफोर्सेबल मिनिमम स्टैंडर्ड्स यानी न्यूनतम मानक तय करने का अधिकार मिल गया है। डोरडैश और उबर जैसी कंपनियां पहले से ही फेयरनेस चार्टर पर हस्ताक्षर कर चुकी हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के नेशनल सेक्रेटरी माइकल केन का कहना है कि अगर मिनिमम स्टैंडर्ड्स कानूनी रूप से लागू होते हैं तो ये दुनिया में अपनी तरह का पहला कदम हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई काउंसलर अधिकारी हांटा वायरस से प्रभावित क्रूज शिप पर मौजूद 4 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को अगले 48 घंटों में सरकारी सहायता वाली फ्लाइट से वापस लाने में मदद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद इन यात्रियों को राज्य सरकारों की निगरानी में क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। एडोलेसेंस सीरीज ने लंदन में आयोजित ब्रिटिश अकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स में 4 बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। 13 साल के एक लड़के पर क्लासमेट की हत्या के आरोप पर आधारित इस सीरीज को बेस्ट लिमिटेड ड्रामा चुना गया है। इस शो की खास बात यह है कि हर एपिसोड को सिंगल टेक में फिल्माया गया है। ऑनलाइन इनसेल कल्चर और उसके युवा लड़कों पर असर को दिखाने के लिए इस सीरीज की दुनिया भर में सराहना हुई थी। ऐसे में स्टीफन ग्राहम को बेस्ट लीडिंग एक्टर और क्रिस्टीन ट्रेमार्को को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ऑस्ट्रेलिया का फूड और ग्रोसरी सेक्टर चेतावनी दे रहा है कि मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण आने वाले समय में ग्राहकों को ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधित शिपिंग के चलते तेल और फर्टिलाइजर्स की ग्लोबल सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे कि फ्यूल, फ्रीट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी उत्पादकता की लागत बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलियन फूड एंड ग्रोसरी काउंसिल का कहना है कि कंपनियां अब तक बढ़ती लागत खुद उठा रही थीं, लेकिन अब ये दबाव लंबे समय तक संभालना मुश्किल होता जा रहा है। बात करें भारत की तो पश्चिम एशिया तनाव के कारण दुनिया भर में मची हलचल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्क फ्रॉम होम, कारपूलिंग, पेट्रोल डीजल बचाने सहित कई सामूहिक संकल्पों की अपील की है। वहीं पीएम मोदी के इन अपीलों पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने 33 वर्षीय भारतीय मूल के नागरिक पर कथित रूप से अवैध तंबाकू बिक्री से लाभ कमाने और सरकारी अधिकारियों को फर्जी इमिग्रेशन दस्तावेज उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है। ये जो व्यक्ति हैं, 26 जून 2026 को ब्रिस्बेन मजिस्ट्रेट कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि एबीएफ ने इस मामले पर क्या कहा है और परमानेंट रेसिडेंसी के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने के क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
3: नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल एसपीएस हिंदी टीम से। इस अंश में हम आपको एक ऐसे कथित अपराध के मामले की विस्तार से जानकारी देंगे जिसमें 33 वर्षीय भारतीय नागरिक शामिल है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने एक भारतीय नागरिक पर अवैध तंबाकू कारोबार से कथित तौर पर मुनाफा कमाने और सरकारी अधिकारियों को फर्जी आवर्जन दस्तावेज व गलत जानकारी देने के आरोप लगाए हैं। तो इस व्यक्ति को 26 जून को ब्रिस्बेन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस यानी एएफपी के अनुसार ये व्यक्ति एक अवैध तंबाकू नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और उसने अपने बैंक खातों के जरिए $7 मिलियन से अधिक की अवैध कमाई के लेन देन में मदद की थी। ये कथित कारोबार ब्रिस्बेन के बाहरी इलाकों की कई दुकानों के जरिए चलाया जा रहा था। पुलिस का ये भी आरोप है कि ये व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में अवैध रूप से रह रहा था और परमानेंट रेजिडेंसी पाने के लिए इमिग्रेशन अधिकारियों को लगातार गलत जानकारी और जाली दस्तावेज उपलब्ध करा रहा था। एक मीडिया रिलीज के जरिए पुलिस ने बताया कि इस साल 27 अप्रैल को ब्रिस्बेन के कुरुबी इलाके में पुलिस द्वारा एक घर पर छापा मारा गया और इस कार्रवाई में ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स और क्वींसलैंड पुलिस सर्विसेज भी शामिल थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब $70,000 नकद, 4 मोबाइल फोन, व्यवसाय से जुड़े दस्तावेज और एक स्टोरेज शेड की चाबियां बरामद कर जब्त की। इस छापे के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध वेप्स भी बरामद हुए जिन्हें बाद में थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया गया। इस व्यक्ति पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें अधिकारियों को झूठे दस्तावेज और भ्रामक जानकारी देना शामिल है जिसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा उस पर एक सरकारी अधिकारी को बेईमानी से प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप है जिसके लिए अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है। साथ ही उस पर व्यावसायिक मात्रा में वेपिंग उत्पाद रखने का भी आरोप लगाया गया है जिसमें अधिकतम 2 साल की जेल हो सकती है। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस के एक्टिंग डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कर्ट बेस्क ने कहा कि जो लोग अवैध तंबाकू कारोबार में शामिल हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि AFP और उसकी सहयोगी एजेंसियां ऐसे आपराधिक गिरोहों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है जो आम ऑस्ट्रेलियाई लोगों से मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। और क्वींसलैंड पुलिस सर्विस से मेलिसा एंडरसन ने कहा कि पुलिस अवैध तंबाकू उत्पादों और अन्य गैर कानूनी वस्तुओं के लिए संगठित अपराध गिरोहों को बाधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे कहती हैं,
4: दिस ऑनगोइंग कोलैबोरेटिव अप्रोच विद इंटरस्टेट एंड कॉमनवेल्थ एजेंसीज एम्स टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स ऑपरेटिंग बिहाइंड द सीन्स आर आइडेंटिफाइड एंड ब्रॉट टू जस्टिस reinforcing our dedication to protecting the community from the harmful impacts of organized crime.
3: और ABF की सुपरिटेंडेंट अमांडा कोपलमैन ने कहा कि ABF अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर उन आपराधिक गतिविधियों को रोकने में काम करती है जो ऑस्ट्रेलिया की सीमा और प्रवासन प्रणालियों को नुकसान पहुंचाती है। वे कहती हैं,
5: Strong inter-agency partnerships are critical to identifying and responding to individuals who seek to exploit immigration processes or profit from illicit activities. Illicit tobacco activities targeted most effectively when agencies work together across every stage of the supply chain, from importation through to storage, distribution and retail.
3: माइग्रेशन एजेंट सुमन दुआ हमें बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति आवर्जन विभाग को फर्जी दस्तावेज जमा करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
6: जी देखो, अगर कोई अपनी फॉर एग्जांपल परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से पहली बात तो चेक होते हैं बिकॉज इट्स परमानेंट रेजिडेंसी। तो डिपार्टमेंट वुड चेक रेटियो रिकॉर्ड्स, आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है, इमिग्रेशन हिस्ट्री होगी, एकेडमिक हिस्ट्री होगी, वो सारा कुछ चेक होगा। अगर उनको लगेगा कि कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंट है या उसको हम बोगस डॉक्यूमेंट बोल देते हैं इन इमिग्रेशन लैंग्वेज, तो डिपार्टमेंट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनको एक्सप्लेन करें कि ये बोगस डॉक्यूमेंट उनको मिला है, कि व्हाट इज द रीजन, या यू नो अगर आपको अपनी साइड ऑफ स्टोरी कोई बतानी है तो। अगर आप उनको नहीं कन्विंस कर पाए एंड दे थिंक कि इट्स अ बोगस डॉक्यूमेंट, तो आपकी एक तो एप्लीकेशन तो डेफिनेटली रिफ्यूज होगी ही, उसके बाद आपके ऊपर 3 साल का बैन भी लग जाता है, उसको पिक 40-20 बोल देते हैं, कि आप 3 साल तक कोई भी एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च नहीं कर सकते हो, इवन की ऑफशोर भी नहीं लॉन्च कर सकते हो।
3: और अगर किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल चार्ज लगा दिया जाए तो उसकी परमानेंट रेजिडेंसी किस प्रकार प्रभावित हो सकती है?
6: बिल्कुल, वो डिपेंड करेगा कि किस हद तक है वो जो क्रिमिनल ऑफेंस है, फिर उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपकी जो क्लोज फैमिली है वो यहाँ पे है कि नहीं है। इन सिचुएशंस में कई बार यू नो यू मे हैव टू गेट द मिनिस्टर टू इंटरवीन और यू नो हैव टू गो देयर, बट डिपेंड्स कि किस टाइप के आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या अगर तो आपने आइडेंटिटी कोई अपनी फ्रॉडलेंट करी है कि आपने अपनी आइडेंटिटी ही गलत सबमिट करी है, तो उसमें आपके पास आपको 10 साल का बैन लगा देते हैं वो. तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि एप्लीकेंट्स अपनी परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन में एकदम से बोल देते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस था ओवरसीज का, ठीक है, आए जैसे वो स्टूडेंट वीजा पे, पर स्टूडेंट वीजा पे उन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस नहीं दिखाया, बट परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते ही उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास एक्सपीरियंस था, हम उसको क्लेम कर रहे हैं
7: जी.
6: बट वो फिर ऑफकोर्स डिपार्टमेंट विल गो बैक एंड चेक उनके स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन की आपके पास पहले ही एक्सपीरियंस नहीं था, अभी कैसे आ गया, देन अगेन इट्स अ फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फॉर देम. इट्स अ यू नो आपने कुछ बोगस डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट आपने अब उनको दिखाए हैं जो की पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे. और एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, जैसे आपके ATO रिकॉर्ड्स चेक होंगे, ठीक है, आप टैक्स जब लॉज करते हो आप अपनी ऑक्यूपेशन बताते हो ना कि मैं ओके आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट और आई एम वर्किंग एज एन इंजीनियर, पर जैसे फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटेंट को तो अपनी सही ऑक्यूपेशन बता दी, लेट्स से यू वर्किंग एज अ यू नो टैक्सी ड्राइवर हो गया या ट्रक ड्राइवर हो गया, पर आपने आगे एप्लीकेशन अपनी डाल दी फॉर एग्जाम्पल एट अ मैनेजमेंट रोल कि आपने मैनेजर रोल की आपने आगे 186 परमानेंट वीजा डाल दिया, तो ऑफकोर्स अगेन इसमें कंसर्न्स हो सकते हैं डिपार्टमेंट को कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बोगस दिए हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कुछ और था और अभी आप कुछ बोल रहे हो. दीज आर जस्ट कपल ऑफ एग्जांपल्स, बट ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें ऐसा पाया जाता है कि एप्लीकेंट ने कुछ बोगस डॉक्यूमेंट दिए हैं जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन भी रिफ्यूज हो जाती है और आगे 3 साल का बैन भी लग जाता है.
3: आपको बता दें माइग्रेशन एजेंट द्वारा दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रदान की गई है. इसका उद्देश्य किसी प्रकार की कानूनी, वित्तीय या पेशेवर सलाह देना नहीं है.
2: तो दोस्तों इस अंश को आप तक लेकर आई थी नताशा कॉल और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी परमानेंट रेसिडेंसी के दौरान अपने दस्तावेज दाखिल करने को लेकर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको आज का सवाल बता देती हूँ. तो आज मैंने आपसे पूछा है कि ये जो धुन है ये कौन से गाने की है, ध्यान से सुनिएगा. तो जल्दी से अपने जवाब आप मुझे 04397997667 पर भेज सकते हैं और कुछ जवाब मेरे पास आए हैं जो कि जल्द आपको बताऊंगी कि सही हैं या नहीं. चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहें SBS हिंदी.
8: आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया. SBS विविधताओं का एक संसार. देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर.
9: SBS साउथ एशियन प्लेज

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: SBS Sport. खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह. साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ. sbs.com.au/sport पर जाएं. SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है. SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है. इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें. इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स. ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे. हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर.
2: Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
3: SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. तो वक्त हो रहा है 5:20 और ब्रेक से पहले हमने नज़र डाली थी आज की खबरों पर और एक खास रिपोर्ट हम आप तक लेकर आए थे, जहां हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस द्वारा एक 33 वर्षीय भारतीय मूल के नागरिक पर कथित आरोप लगाए गए हैं अवैध तंबाकू बिक्री के, और ये जो मामला है ये फिलहाल कोर्ट में निलंबित है. तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं कि हमारा कोई भी कार्यक्रम या शो जो है वो आपको हमारी वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर भी मिल जाएगा. इसके अलावा SBS हिंदी जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध है. तो यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और हमें फॉलो कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम वीडियोस और रील्स के माध्यम से एक अलग अंदाज में आप तक ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर की खबरें लेकर आ रहे हैं. तो दोस्तों, आज का ये जो आने वाला सेगमेंट है ये एक ऐसे विषय पर है जिसके बारे में बहुत सी नए माएँ अनुभव तो करती हैं लेकिन खुलकर बात नहीं करती हैं. बच्चे के जन्म के बाद शरीर में असल में क्या क्या बदलाव आते हैं. चाइल्ड बर्थ के बाद ये उम्मीद बनाई जाती है कि महिला जल्द ही पहले जैसी हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि कई महिलाओं के लिए डिलीवरी के हफ्ते या महीनों बाद भी शरीर लगातार बदल रहा होता है, चाहे वे हार्मोनल बदलाव हों, पेल्विक फ्लोर रिकवरी हो, थकान हो या अंदरूनी हीलिंग की प्रक्रिया. आज हम समझेंगे कि ये बाउंस बैक वाली सोच क्यों अक्सर गलत दिशा में दबाव बनाती है, क्या सच में सामान्य है और क्या नहीं, और कैसे न्यू मदर्स अपने शरीर को बिना किसी तुलना या गिल्ट के बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकती हैं. और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रही हैं हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निशा कालिया. नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और आज मदर्स डे के इस खास अवसर पर मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ. प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद एक महिला को बहुत सारे शारीरिक और हार्मोनल बदलावों से गुजरना पड़ता है. इस पूरी प्रक्रिया को पोस्टपार्टम पीरियड कहा जाता है, जिसमें रिकवरी हर महिला के लिए अलग होती है. आजकल बाउंस बैक कल्चर और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले क्विक ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से कई सारी नई माताओं यानी न्यू मदर्स पर ये तनाव बढ़ जाता है कि उनका शरीर जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाना चाहिए. हालांकि वास्तविकता इससे कई दूर है. असल जिंदगी में हीलिंग, रिकवरी और अडेप्टेशन एक बहुत ही धीमा और निजी प्रोसेस है. आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर निशा, जो कि हमें समझाएंगी कि क्यों कई महिलाएं अपने पोस्टपार्टम जर्नी में खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर पाती हैं और इस दौरान उनके शरीर और दिमाग में क्या क्या रियल चेंजेस आते हैं.
5: थैंक यू सो मच. मैं आपके दर्शकों को सबको नमस्कार करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम निशा कालिया है. मैं एक कॉन्टिनेंस एंड पेल्विक हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ.
4: कई माताएं ऐसी होती हैं जो महसूस करती हैं कि बच्चे के जन्म के महीनों बाद भी उनका जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है, वो नॉर्मल नहीं हुई है, तो क्या ये गर्भावस्था के बाद शरीर का बाउंस बैक करना सच में संभव होता है?
5: नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये बाउंस बैक या पहले जैसे होना पॉसिबल नहीं होता. हम पता नहीं क्यों ऐसे सोचते हैं कि हम पहले जैसे हो जाए, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, पर आपकी बॉडी ने इतनी चेंजेस गो थ्रू की है, प्रेगनेंसी, एक बेबी ग्रो करना, आपके इतने फिजिकल चेंजेस होते हैं, आपके हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इतने बदलाव के बाद आप कैसे सेम हो सकते हो?
4: अच्छा, ऐसे काफ़ी सारे पोस्टपार्टम सिम्टम्स होते हैं जो कि औरतों को लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन असल में वे नॉर्मल नहीं होते.
5: हाँ जी, ऐसे बहुत सारे होते हैं और मुझे लगता है कि हमने सोसाइटी में इनको नॉर्मलाइज कर दिया है, कि जैसे यूरिन लीकेज, जब आप छींकते हो या हंसते हो या खांसी आती है, ये बहुत कॉमन होता है न्यू मम्स में, बट ये नॉर्मल नहीं है और इसकी ट्रीटमेंट भी होती है. और चीजें होती हैं जैसे ब्रेस्ट पेन विद ब्रेस्ट फीडिंग, अगर आपको पेल्विक पेल्विक एरिया में पेन हो रही है या हैवीनेस फील होती है, या फिर इवन कमर में दर्द जो जा ही नहीं रही है. तो ये सारी चीजें हम सब सोचते हैं कि ये तो मम्मी होने का पार्ट होता है, ये तो नॉर्मल है, बट ये कॉमन होती है पर नॉर्मल नहीं होती.
4: तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, मतलब किस तरह की मेंटल और फिजिकल फैसिलिटीज एक औरत को मिलनी चाहिए इस समय के दौरान व्हेन शी इज ट्राइंग टू बाउंस बैक?
5: तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अजीब सा लग रहा है अपनी बॉडी में, कुछ सही नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा ही थके थके रहते हो, कुछ दिन में करना बहुत मुश्किल लगता है, ये सारी चीजें साइंस हैं, आपकी बॉडी आपको कह रही है कि आप नीड टू पे अटेंशन और सुनो अपनी बॉडी की. ऐसे ना सोचो कि ओ मैं तो वीक हूँ, मैं तो कंप्लेन बहुत करती हूँ, ऐसे नहीं होता. जो आप फील कर रहे हो वो है एंड यू नीड टू एड्रेस इट. एंड कैसे एड्रेस करना चाहिए, सबसे पहले अपने जीपी से बात करो, या फिर जब आप अपने मटर्नल चाइल्ड हेल्थ के साथ अपॉइंटमेंट लेते हो उनसे बात करो, वो भी आपको सलाह दे सकती हैं. बट ऐसी प्रॉब्लम्स एक पेल्विक फ्लोर फिजियो भी एड्रेस कर सकते हैं.
4: अच्छा निशा जी, हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, दबाव है. हम काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि डिलीवरी के जस्ट बाद ही वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गए हैं. तो ऐसे में आम लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो किस तरह से बदल रही हैं?
5: मुझे लगता है आम लोगों ने, स्पेशली आजकल की मम्मियों ने अपने ऊपर बहुत सारा प्रेशर ले लिया है, और जैसे सोशल मीडिया में दिखता है वैसे असल में होता नहीं है, या वो पूरी पूरी स्टोरी नहीं दिखाते. जैसे आलिया भट्ट फॉर एग्जांपल, उसने 3 महीने पोस्टपार्टम में मूवी शुरू कर दी और वाज लुकिंग बैक जस्ट जैसे प्री बेबी के जैसे, बट उसमें कितनी ट्रेनिंग लगती है, कितना उनका खाना, उनका देखभाल अलग होता है हम नॉर्मल लोगों से, तो वो इतने एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ कर पाती हैं. पर हम आम लोग हैं, हमारे पास इतना सपोर्ट भी नहीं है, एक्सरसाइज करना भी इतना, इट्स नॉट रियली दैट कॉमन इन आवर सोसाइटी टू नॉर्मलाइज एक्सरसाइज एज पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन. और बेबी को देखने में हमारा सारा टाइम लग जाता है कि हम खुद को देख ही नहीं पाते. तो सोशल मीडिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनको देखना चाहिए, बट सोचना चाहिए कि आप कहाँ, आपकी बॉडी कैसी है और आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो. अगर आपने कभी एक्सरसाइज की नहीं, आपने प्रेगनेंसी में भी नहीं की, उससे पहले भी नहीं की, तो फिर आपकी रिकवरी भी स्लो होती है कंपेयर टू एक्टिव पीपल और जो एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल के पार्ट में रखते हैं हमेशा. प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी रिकवरी जल्दी होती है. पर जो लोग इतने एक्टिव नहीं रह पाते, उन एक्सरसाइज उनकी लाइफस्टाइल में नहीं है, तो उनकी रिकवरी स्लोअर होती है और उनको पेन भी ज़्यादा हो सकता है, उनको और भी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं. तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस किस लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर गाइडेंस लेनी चाहिए कि हम कैसे स्ट्रॉन्गर बने और अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करें। मेरी बिलीफ है कि हम फिर से वैसे नहीं हो सकते जैसे बेबी से पहले थे, बट हम अपनी न्यू बॉडी को स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं, और हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारी बॉडी ने कितना कुछ हमारे लिए किया, एक बेबी ग्रो किया और अब कितना कुछ कर रही है हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे बेबी को सपोर्ट करने के लिए, तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए।
4: अच्छा निशा जी, यदि मैं आपसे ऐसी तीन टिप्स मांगू जो कि हर न्यू मदर को पता होनी चाहिए व्हेन शी इज यू नो इन हर रिकवरी प्रोसेस, तो वो क्या होंगी?
5: हर मदर के लिए रिकवरी अलग लगती है एंड इट डिपेंड्स ऑन कैसे आपकी प्रेगनेंसी कैसे थी, आप प्रेगनेंसी से पहले कैसे एक्सरसाइज कर रहे थे, आपका लाइफस्टाइल कैसे था, ये सारी चीजें ऐड अप होती हैं और आपके एक्सपीरियंस को चेंज करती हैं। सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगी कि आप अपने लिए प्रेगनेंसी के टाइम ही अच्छे से कंप्रेशन शॉर्ट्स या लेगिंग्स लो, तो वो क्या होती है कि वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करती हैं ड्यूरिंग दैट अर्ली फेज, फर्स्ट सिक्स वीक्स जो होते हैं जब आप रिकवर कर रहे हो। तो ऐसे गारमेंट्स लाइक कंप्रेशन शॉर्ट्स और कंप्रेशन लेगिंग्स पहनने से आपकी बॉडी को सपोर्ट मिलती है, तो आप अच्छे से मूव कर सकते हो, अ बिट मोर कंफर्टेबली यू कैन मूव अराउंड एंड फील बेटर, आपके मसल्स को सपोर्ट मिलती है, आपके एब मसल्स को हीलिंग होती है उनके साथ एज वेल। सो दैट वुड बी टिप नंबर वन। नंबर टू वुड बी के ऐसे आपने सुना होगा कि यू नो तब सोना जब बेबी सोता है तब सो जाना, लेकिन ऐसे रियलिस्टिक नहीं होता। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब बेबी सोता है खुद नींद नहीं आती, तो फिर आप सोचते हो कि ओ चलो मैं वॉशिंग का एक लोड लगा लेती हूँ या काम, नींद तो आ नहीं रही तो मैं काम ही कर लेती हूँ इस टाइम में। बट आपको अगर नींद भी नहीं आ रही आपको लेट जाना चाहिए और जस्ट अपनी बॉडी को रेस्ट करना चाहिए, ऐसे प्रेशर नहीं डालना कि सो नहीं रही तो मैं कुछ और ही कर लूँ। पर जब बेबी सो रहा है तो आप लेटो, अपनी बॉडी को रेस्ट करो, और वो फिर आपकी हीलिंग को भी अच्छा रखता है। एंड देन माई थर्ड टिप वुड बी कि बिल्कुल भी इनएक्टिव रहना अच्छा नहीं होता रिकवरी के लिए, वो भी आपकी रिकवरी को स्लो करता है। तो धीरे धीरे जैसे आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होना लगे, थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील होना लगे, आपको वॉकिंग शुरू कर देनी चाहिए, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी आप शुरू कर सकते हो एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो दैट वुड बी माय थ्री मेन टिप्स।
4: तो निशा जी, आपका आज SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस संदर्भ में जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
5: थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। आई एम सो ग्लैड के सबको अच्छा लगा होगा मेरे आंसर सुन के और कुछ सीखने को मिला होगा।
4: आपको बता दूं कि इस अंश में प्रस्तुत किए गए विचार व्यक्तिगत हैं और SBS न तो इससे सहमत है और न ही असहमत। साथ ही निजी सलाह के लिए आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर से संपर्क करें। SBS न्यूज के लिए इस अंश को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे। तो दोस्तों 04397997767 पर आप अपने संदेशों के माध्यम से ज़रूर बताएं मुझे कि ये जो अंश था आपको कैसा लगा। खूब सारी न्यू मदर्स या ऐसी महिलाएं जो हाल ही में माँ बनी हैं या फिर इस तरह की कोई चीज़ करने का फ्यूचर में प्लान करती हैं, उनके लिए इस तरह की जो जानकारी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और उनको सुनकर कैसा लग रहा है, यदि आप अपने संदेशों के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज का सवाल बता देती हूँ। आज मैंने आप सभी को एक धुन सुनाई है और आपसे पूछा है कि आप मुझे इस गाने का नाम बताएं। तो ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से चला रही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के खूब सारे संदेश मेरे पास आ गए हैं, लेकिन जो श्रोता हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं उनको मौका दे रही हूँ इस सवाल का सही जवाब देने का। जब तक आपके जो संदेश हैं वो मुझ तक पहुँच रहे हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौटकर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
6: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
7: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
8: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
6: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर।
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो मेलबर्न में अगर आप ड्राइव करते हैं तो एक ट्रैफिक रूल ऐसा है जो कई लोगों की धड़कन बढ़ा देता है, हुक टर्न। ये नियम नए ड्राइवरों के साथ साथ कई अनुभवी लोगों के लिए भी चुनौती बन जाता है। आखिर हुक टर्न है क्या, इसे लेकर इतनी घबराहट क्यों रहती है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जो कि आप तक लेकर आ रहे हैं नबील हसन।
9: हुक टर्न मेलबर्न की सड़कों का एक ऐसा यूनिक ड्राइविंग रूल जो शायद सुनने में आसान लगता है पर कई बार अनुभवी ड्राइवर्स को भी कंफ्यूज कर देता है। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील हसन। आज हम बात कर रहे हैं मेलबर्न के मशहूर हुक टर्न्स के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया के ट्रैफिक सिस्टम का एक यूनिक और ज़रूरी हिस्सा है। चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, हुक टर्न के वक्त थोड़ी सी नर्वसनेस तो आ ही जाती है। आखिर ये रूल बना क्यों, लोग इसे इतना चुनौतीपूर्ण क्यों मानते हैं और इसमें सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती हैं, आइए इन सब पहलुओं को समझते हैं और बात करते हैं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट रौनक शाह से।
10: थैंक यू एंड नमस्कार।
9: रौनक जी, विक्टोरियन ड्राइवर्स की बात करें तो RACV के एक पोल के अनुसार 44% लोग हुक टर्न को सबसे मुश्किल मानते हैं, आपके हिसाब से ऐसा क्यों है?
10: हुक टर्न, व्हेन वी लुक एट द नेम, यू नो, अगर जब हम सोचते हैं कि हुक टर्न क्या है, राइट टर्न है, लेफ्ट टर्न है, वो दैट क्रिएट अ बिग इश्यू। तो जनरली हम लोग को ड्राइविंग टेस्ट में कि ड्राइविंग बुक्स में सिखाया है कि यू टर्न राइट फ्रॉम द राइट और यू टर्न लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये हुक टर्न ही ऐसा है कि आपको राइट करने में लेफ्ट से जाना पड़ता है, इसीलिए सब लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है और ये मेलबर्न में ही है। सो दिस इज लाइक द यूनिक प्रोडक्ट ऑफ द मेलबर्न। तो इसीलिए जो पीपल आर नॉट रेडी टू टर्न फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट टू द राइट साइड ऑन द ट्रैफिक लाइट, तो इसीलिए ये सबको बहुत इंटीमेटिंग लगता है। और स्पेशली जो लोग ट्रैवल करते हैं, अगर आप मेलबर्न में रहते हो और मेलबर्न में ड्राइविंग टेस्ट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको हुक टर्न दिखाया गया है, आपने हुक टर्न स्टडी किया है और कोई कोई बार ड्राइविंग टेस्ट में भी आता है, तो इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है।
9: जी अच्छा, जब नए ड्राइवर्स पहली बार हुक टर्न के बारे में सुनते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है?
10: जैसे अगर सबको हम बोलते हैं तो हुक टर्न तो कोई बार वो हमारे सामने देखते हैं एंड दे लाफ एट अस एंड दे से आर यू सीरियस रौनक, आर वी टर्निंग राइट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रोड? तो सब लोगों को बहुत ही फनी लगता है एंड यू नो पीपल मेक अ जोक, बट वेन दे अंडरस्टैंड द लॉजिक कि इसके को हुक टर्न को क्यों ऐसे लेना है, क्योंकि मेलबर्न का जो ट्रैम नेटवर्क है विच इज द लार्जेस्ट ट्रैम नेटवर्क इन द वर्ल्ड, तो ये जो हुक टर्न बनाया है वो इसीलिए डिजाइन ऐसा किया है कि ट्राम भी इजिली मूव हो सके, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़े एंड पीपल कैन इजिली एंड मेक द राइट सेफ टर्न।
9: क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और प्लानिंग एक अलग स्तर पे पहुंच रही है तो हुक टर्न का ये रूल शायद आउटडेटेड हो जाए?
10: आउटडेट में तो ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बोला कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेम नेटवर्क है और इससे एफिशिएंसी भी एज पर उनके जो डाटा से तो 11 टू 16 सेकंड्स का उनका एफिशिएंसी बढ़ा है बिकॉज ऑफ द हुक टर्न। कितने लोगों को पता नहीं है कि ये लोग जब स्टडी करते हैं तो उनको वो भी पता होता है कि ट्रेन कितने कम टाइम में कितने मैक्सिमम पैसेंजर को कैरी करते हैं, ड्राइवर्स को भी बहुत लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हुक टर्न यस इट इज कंफ्यूजिंग, यस ड्राइवर्स को ऐसे लगता है कि ये इंटिमिडेटिंग है, बट वेन वी लुकिंग एट द डाटा पॉइंट ऑफ व्यू इट एक्चुअली वर्किंग वेल। तो आउटडेटेड जो आपने क्वेश्चन पूछा, I don't think so अभी outdated हो जाएगा। जब जब कोई भी road rules या network change होता है तो they always look at the productivities। अगर कोई ऐसा rules नया आता है और ऐसी नई road conditions आती है तो definitely they will try to reduce the confusion।
9: अच्छा, hook turn करते वक्त सबसे बड़ी और खतरनाक गलती कौन सी होती है?
10: सबसे dangerous है कि because they get panic। आप मिडल में खड़े रहते हो या ट्रैफिक लाइट पे हो तो दे टर्निंग टू क्विकली टू अर्ली, क्योंकि उनको ऐसे फील होता है कि ये हो जाए इससे पहले मैं टर्न कर दूं, ये होता है मुझे लेफ्ट में नहीं जाना इसलिए मैं टर्न कर दूं। तो ये टर्निंग टू अर्ली दैट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दे डू। कोई कोई बार वो ग्रीन लाइट पे खड़े रहते हो तो उनको पैनिक फील होता है। नंबर टू कि जब वो लोग ग्रीन में एंटर होते हैं वहां पे वेट करते हैं और जो अपोजिट साइड ऑफ द ट्रैफिक लाइट ग्रीन होता है तब आपको टर्न करना है, तो ये जो टाइम है ना तो वो ड्राइवर बहुत ही पैनिक कोई बार हो जाता है बिकॉज ट्रैम भी आती है कोई बार, पीपल माइट बी हॉन्किंग एज वेल, साइकिलिस्ट भी आता है, पेडेस्ट्रियंस भी आते हैं, तो वो टाइम पे आपको पूरा जो उसका सिस्टम है हुक टर्न कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए।
9: जी अच्छा, क्या आपके पास कोई यादगार रोमांचक या फिर मजेदार एक्सपीरियंस है लोगों को हुक टर्न या ड्राइविंग लेसन से जुड़े हुए?
10: इसमें क्या है कि एवरी पर्सन व्हेन वी ट्राई टू टीच देम वो लोग तो पहले उनका रिएक्शन ऐसे आता है कि शॉकिंग, क्योंकि ये मेलबर्न का यूनिक प्रोडक्ट है। अगर आप कोई ओवरसीज से आते हो या यहाँ से भी इंटरस्टेट से आते हो तो अभी भी जैसे कोई सिडनी से या एडिलेड से मेलबर्न में आता है और वो हुक टर्न बोलता है तो दे गेट कंफ्यूज। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि पीपल लाफ एट अस एंड दे से कि रौनक आर यू सीरियस आई एम टर्निंग फ्रॉम हियर, ये गाड़ी मुझे ठोक नहीं देखी ना, ये ट्रैम अगर बीच में आती है तो मैं क्या करूंगा, कैन आई स्टे ऑन टॉप ऑफ द ट्रैम। तो ये जो फनी एक्सप्रेशन होता है ना उनका फेशियल एक्सप्रेशन दैट इज काइंड ऑफ फॉर अस एज वेल इज इंटरेस्टिंग।
9: रौनक जी, क्या आपको लगता है कि मेलबर्न के अलावा दूसरे शहरों में भी हुक टर्न की जरूरत है या उसे अडॉप्ट करना चाहिए?
10: हुक टर्न, सी व्हेन वी लुकिंग एट द डाटा एंड स्टैट्स मेलबर्न

0: जी, ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी अन्य देश में भी क्या ऐसे कोई यूनिक ड्राइविंग रूल हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
1: नबील जी, यू बी सरप्राइज। जैसे आपका आपने जो हुकटन का बोला, और मेलबर्न में हुकटन इज अ यूनिक प्रोडक्ट, ऐसे यूरोप में और जापान में भी टू स्टेज टर्निंग का है, वेरी सिमिलर टू द हुकटन हम यहाँ करते हैं, बट वहां पे खाली साइकिलिस्ट और जो स्कूटर्स होते हैं उनके लिए ये अलाउ है। तो ये हुकटन ऐसा नहीं है कि खाली ऑस्ट्रेलिया में ही है, द कंसेप्ट इज अ बिट कॉमन इन अदर कंट्रीज एज वेल। जैसे यूएसए में है तो मिशिगन में एक ऐसा है कि नो डायरेक्ट राइट टर्न है, तो ड्राइवर को थोड़ा स्ट्रेट जाके यू टर्न करना पड़ता है और उसके बाद वो लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं। तो अगर आपने मेलबर्न में ड्राइव किया है, यू टर्न किया है, और अगर आप मिशिगन में जाते हो तो इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट वे। तो हाँ, तो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग सिटी में, डिपेंड ऑन द लोकल ट्रैफिक, वो लोग थोड़े कस्टमाइज करते हैं रूल्स।
0: तो ये थी हमारी बातचीत रोड सेफ्टी एक्सपर्ट रौनक शाह के साथ।
1: थैंक यू जी, ड्राइव सेफ।
0: अगर आप ये पॉडकास्ट एक बार फिर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर जा सकते हैं। SBS हिंदी पर यह रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने। इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
2: तो दोस्तों, हुक टर्न आखिर होता क्या है, इस अंश में हमने आपको बताया, और इसी के साथ आज का जो सवाल है एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, और ब्रेक से लौटने के बाद ये गाना भी आपको सुनाऊंगी और आप सभी के संदेश पढ़ूंगी, तो ध्यान से सुनिए और बताएं मुझे 04397997667 पर कि ये जो धुन है ये कौन से गाने की है। तो दोस्तों, जब तक आप अपने जवाब मुझे भेज रहे हैं, हम लेते हैं आज की शाम का आखिरी ब्रेक।
3: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's a Desi dance party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
4: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
5: SBS Chill पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS Chill सुनने के लिए SBS Audio ऐप पर जाएं।
6: दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए, सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त, या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें। अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
7: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
8: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
2: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। चलिए आज का एक बार सवाल फिर से आपको बता देती हूँ। ये धुन ध्यान से सुनिए और फिर मुझे बताइए कि ये कौन सा गाना है। नंबर है 04397997667। तो दोस्तों, जब तक आप अपने जवाब मुझे भेज रहे हैं, आइए सुनते हैं बॉलीवुड के ही एक और निखरते उभरते सितारे की कहानी। सुनते हैं फिल्मी डायरी, जिसमें बात होगी कार्तिक आर्यन की। उम्मीद करती हूँ ये अंश आपको पसंद आएगा।

0: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। बॉलीवुड के जिस कलाकार की आज हम बात करने जा रहे हैं, उनकी फेसबुक पर लगी फोटो देख फिल्म के लिए ऑडिशन देने को कहा गया था। जब उनकी पहली फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो उस वक्त वो 12 लोगों के साथ एक छोटा सा कमरा शेयर करके रहते थे। एक फिल्म में 5 मिनट के डायलॉग ने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दी थी, जो हिंदी फिल्म में सबसे लंबा माना जाता है। अभिनय के अलावा वो एक सफल मॉडल भी हैं, वो महिलाओं के बीच काफी फेमस हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन की। कार्तिक आर्यन का जन्म 22 नवंबर 1990 को ग्वालियर में हुआ था। उनका असली नाम कार्तिक तिवारी है। उनके पिता का नाम मनीष तिवारी है, उनकी माँ का नाम माला तिवारी है। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम किट्टू तिवारी है। कार्तिक आर्यन की आरंभिक शिक्षा ग्वालियर में हुई। इन्होंने 12th तक की पढ़ाई सेंट पॉल स्कूल ग्वालियर से पूरी की। उन्होंने नई मुंबई के डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जैव प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कार्तिक आर्यन ने यूनिवर्सिटी में रहते हुए मॉडलिंग करियर की शुरुआत की और फिल्मों के लिए असफल ऑडिशन के 3 साल बाद कार्तिक ने क्रिएटिंग कैरेक्टर्स इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया। कार्तिक आर्यन को पहली फिल्म में मौका तब मिला था जब कार्तिक इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थे। निर्देशक लव रंजन ने फेसबुक पर कार्तिक की एक फोटो देखी थी, जिसके बाद उन्होंने कार्तिक को अपनी फिल्म के लिए ऑडिशन देने को कहा और कार्तिक के ऑडिशन के बाद उन्हें प्यार का पंचनामा फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। इस फिल्म में इन्होंने लगभग 5 मिनट बिना रुके अपना संवाद बोला था, जो हिंदी फिल्म में सबसे लंबा माना जाता है। कार्तिक जब मुंबई आए थे तब उनके पास अपना घर नहीं था। एक इंटरव्यू में कार्तिक ने बताया था कि जब उनकी पहली फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अलग से कोई कमरा किराए पर ले सके, इसलिए उन्हें 12 लोगों के साथ एक छोटा सा कमरा शेयर करना पड़ा। कार्तिक आर्यन की पहली फिल्म जबरदस्त हिट रही थी। लोगों को कार्तिक का अभिनय बहुत पसंद आया था। 2013 में लव रंजन ने कार्तिक को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया। फिल्म का नाम आकाशवाणी था। ये फिल्म दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई, हालांकि कार्तिक की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा। साल 2014 में अभिनेता कार्तिक को निर्देशक सुभाष घई ने अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया था और इस फिल्म का नाम कांची अनब्रेकेबल रखा गया था। ये फिल्म नाकाम साबित हुई थी और इस तरह से कार्तिक ने लगातार 2 फ्लॉप फिल्में दी। साल 2015 में लव रंजन ने फिर से कार्तिक के साथ मिलकर प्यार का पंचनामा 2 नाम की मूवी बनाई। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा पसंद किया गया और कार्तिक को लंबे समय के इंतजार के बाद एक हिट फिल्म मिली। साल 2017 में अश्विनी धीर के निर्देशन में गेस्ट इन लंदन फिल्म बनाई गई थी, लेकिन ये फिल्म भी सफल नहीं रही। इसके बाद उन्होंने लुका छुपी, पति पत्नी और वो, और भूल भुलैया 2 जैसी हिट फिल्में दी, जिसमें उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी और थ्रिलर में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फ्रेडी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और सत्य प्रेम की कथा में उनके प्रदर्शन ने एक अभिनेता के रूप में उनकी क्षमता को और भी बेहतर साबित किया। आज कार्तिक आर्यन लगातार बॉलीवुड में सबसे अधिक मांग वाले युवा सितारों में से एक बन गए हैं। 2022 में फिल्म भूल भुलैया के सीक्वल में कार्तिक आर्यन ने काम किया। ये फिल्म भी कार्तिक आर्यन की सुपरहिट फिल्म रही। उन्होंने गेस्ट इन लंदन, लुका छुपी, लव आजकल आदि फिल्मों में भी अभिनय किया। कार्तिक आर्यन अपने लव अफेयर्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले कार्तिक आर्यन और फातिमा सना शेख के बीच बढ़ती नजदीकियों की खबरें सामने आई थी। इसके अलावा कार्तिक आर्यन और नुसरत को एक साथ कई बार देखा जाता था। कार्तिक आर्यन के साथ सबसे ज्यादा नाम जोड़ा गया है, वो है डिंपल शर्मा। दोनों को एक साथ कई बार बॉलीवुड इवेंट्स में देखा गया है, लेकिन दोनों ने अपने रिलेशनशिप का जिक्र नहीं किया। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे फिल्म पति पत्नी और वो में एक साथ नजर आए। फिल्म रिलीज होने के बाद दोनों की रिलेशनशिप की खबरें सामने आने लगी थी। इसके अलावा कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की फिल्म लव आजकल भले ही फ्लॉप रही, लेकिन फिल्म के दौरान दोनों की रिलेशनशिप की खबरें सामने आने लगी थी। कार्तिक आर्यन फिलहाल सिंगल हैं और किसी के साथ डेटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले नुसरत भरूचा के साथ डेटिंग की अफवाह आ रही थी। फिलहाल वो किसी के साथ किसी भी रिश्ते में होने के बजाय इस समय अपने करियर के प्रति बहुत अधिक केंद्रित हैं। कार्तिक आर्यन को स्टारडस्ट अवार्ड की ओर से बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल प्यार का पंचनामा 2, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड मोस्ट एंटरटेनिंग एनसेंबल कास्ट प्यार का पंचनामा 2 पेटा इंडिया हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी वोग ब्यूटी अवार्ड हार्ट थ्रोब ऑफ द ईयर 2018 निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड इंडिया डायनेमिक परफॉर्मर अवार्ड सोनू के टीटू की स्वीटी जी सिने अवार्ड बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल सोनू के टीटू की स्वीटी बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर कार्तिक को क्रिटिक्स चॉइस का आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।
1: तो दोस्तों, ये आपने सुनी कार्तिक आर्यन पर आधारित फिल्मी डायरी। चलिए एक बार फिर से आपको ये जो धुन है सुना देती हूँ और आपको बता दूं कि आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा गाना है। तो आपको बता दूं कि कई सारे संदेश मुझे आए हैं और ज़्यादातर लोगों ने ये जो गाना है ये बिल्कुल सही गेस किया है। ये जो गाना है ये है फ्रॉम द फिल्म रब ने बना दी जोड़ी और इसका नाम है हौले हौले। तो खूब सारे लोगों के संदेश मुझे आए हैं। पीयूष जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा मुझे संदेश आया है वैभवी जी का, जिनका जवाब बिल्कुल सही है और साथ ही में इन्होंने तो मूवी का नाम भी लिख दिया है। इसके अलावा एक और संदेश मुझे आया है जिन्होंने सही जवाब दिया है लेकिन अपना नाम नहीं बताया है। साथ ही मुझे एक और संदेश आया है जफर जी का, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मेलबर्न से नितिन जी का जो सवाल है बिल्कुल सही है, जवाब है बिल्कुल सही है और जहीर जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो अब आपको ये प्यारा सा गाना सुनाती हूँ और साथ ही आप 04397997667 पर बता सकते हैं कि आज की शाम का जो कार्यक्रम है आपको कैसा लग रहा है। इसके अलावा असद अहमद जी का एडिलेड से संदेश आया है, लिखते हैं हाय भव्या, होप यू विल बी फाइन, आपका शो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही इन्होंने आज के सवाल का जवाब बिल्कुल सही बताया है और साथ ही एक गाने की भी फरमाइश करी है। तो आज तो समय की हमारे पास थोड़ी कमी है लेकिन कोशिश करूंगी कि कल के जो कार्यक्रम में आपका जो गाना है वो हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा लिखते हैं आप हमेशा खुश रहें, तो आप हमारे साथ SBS हिंदी के साथ ऐसे ही बने रहिए और हम तो फिर खुश रहेंगे ही। इसके अलावा एक और संदेश मुझे आया है जिन्होंने लिखा है धुरंधर 2 का गाना बजाइए, तो कल के कार्यक्रम में आपकी जो रिक्वेस्ट है मैं पास ऑन कर दूंगी। तो कल 5 से 6 बजे आप ट्यून इन ज़रूर करिए और सुनिए अपने मन पसंदीदा गाने।

तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का जो हमारा कार्यक्रम था आपको खूब पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई भी संदेश या सुझाव है तो आप हमें 04397997667 पर जरूर लिख भेजें और बताते रहें हमें कि हम आपको जो हमारा कार्यक्रम है वो कैसा लग रहा है। खूब सारे आपके आज संदेश आए हैं, ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और एक छोटे से अंतराल के बाद अगले मंडे हमारी फिर से मुलाकात होगी और कोशिश करूंगी कि ऐसा ही कुछ मज़ेदार आपके लिए लेकर आऊं ताकि आपके जो मैसेजेस हैं वो हम तक पहुँच पाएँ और मुझे पता चलता रहे कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं, तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: SBS साउथ एशियन।

0: Your news from here
1: and hits from home. SBS South Asian.
2: अरे अल्फा बीटा गामा थीटा, तेरे भाई ने सबको पीटा
3: भगा भगा के।
2: आपके लिए आए स्पेशली।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: कर्मा

से बातें रोक दिए नाउ शी फॉलोज मी अब उसकी जॉब की सहेलियों का मैं चहेता मांगती है नंबर एसपी पे मैं नहीं देता मन तो बहुत है कहानियां सुना दूं पर मैं बॉल लेके आ गया ना भाई बैठ देगा।

क्यूब पे करे वीडियो ट्रेंड तेरा, लौंडा बनना चाहे बेबी बेस्ट फ्रेंड तेरा, जैसे कमर हिलाए कभी दाएं कभी बाएं, तेरा स्वैग और नखरा भी एंड तेरा।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

है पसीना, शक्ल है इंडियन, बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कटरीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद है, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

जो हमसे वफा ढूंढ रहे थे वो खुद ही बेवफा हो गए। हमने सच का आईना क्या दिखाया, वो खफा हो गए, वो खफा हो गए।